क्योंकि वो नया होता है। तुझको नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती हैं। पुराने दोस्तों की वही कहानियां सुन सुन के हम पक जाते हैं, लेकिन प्यार उस फटी हुई टी शर्ट की तरह होता है जिसमें हम रोज रात सुकून से सोते हैं। और जब प्यार दोस्ती बन जाता है की तरह होता है जिसमें हम रोज रात सुकून

0: your girls and your boys. Well, thank you. Baby, yeah, it's too late.
1: मैं तो सिर्फ अपने बॉयज को थोड़ी फ्रेश एयर दे रहा था.
0: Really?
1: Why not?